0: Swa 99.9.
1: The difference is the music.
2: So, बापू तेरे होने से घर में उजियारा है. So, बापू जिन्हें साडे वास्ते अपनी सारी जिंदगी लगाती उहदे नाल ही साडी जिंदगी विच रोशनी है, सहारा है. अज असी बहुत सारे पंजाब तो भी दूर बैठे हाँ, पर परिवार दियां जड़ां पंजाब दी मिट्टी नाल जुड़ियां होनियां. कई पिता इत्थे आस्ट्रेलिया विच नवें सिरे तो जिंदगी शुरू करन लगे हन. कईआं ने फैक्टरी च कम कीता, कईआं ने कंस्ट्रक्शन विच, ते कईआं ने टैक्सी चलाई. किसी ने शॉप का बिजनेस किया, किसी ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों लई एक बेहतर भविख बनाया. कई पितावां ने अपने बच्चों नूं कहा, तुसी पढ़ो, तुसी अगे बढ़ो, मैं मेहनत करता रहांगा. उन्होंने अपने बच्चों नूं ओ मौके देण लई मेहनत भी की, शायद उन्हां नूं अपनी जवानी विच नहीं मिली होवे. इसलिए आस्ट्रेलिया विच रहिंदे हर पंजाबी पिता नूं अज दिलों सलाम. तुसी अपने सिर्फ अपने परिवार लई नहीं, अपनी एक पीढ़ी नूं भी नवीं धरती ते खड़ा कीता है.

अब जब जिंदगी समझ में आई है, अब जब जिम्मेदारियां आई हैं, अब जब रातों की नींद उड़ी है, अब जाकर आपकी याद आ रही है, अब समझा हूं पापा।

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: चलो अगे लियाकत अली खान तो शहनाई ते एक कड़ी हुई तर्ज सुनते हैं। लियाकत अली खान दियां कड़ी हुई तर्जां ते शहनाई जिहड़ी ओह बजाई आ बहुत सोहनी लगती है। उहदे विच्चों किदां कलाकार बोलदा ओह सुनते हैं। बहुत ही प्यारी जे गीत दी एक तर्ज़।

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 9:27 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ।
3: ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉੱਧੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੇਤਕੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਨ ਹੈ। ਬੰਨ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ ਦੇ ਅਤੇ ਛੋਲੀਏ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਕੇਤਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਲ ਕੇਤਕੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਾਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੇਤਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਕਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਜਾਂ ਪਰਾਤ ਮਾਂਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਜਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਧੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਜਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਸੌਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੱਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋਠਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸਾਂ, ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਆ ਹੋਆ ਬਿਟੀਆ, ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਠੰਡੀ ਬਹੁਤ ਥੀ ਅੰਮਾ, ਬਸ ਬਿਸਤਰ ਮੇਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾੜਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ। ਤੁਹਾਰਾ ਕੌਨ ਸਾ ਗਾਓ ਹੈ ਅੰਮਾ? ਤੋ ਜਹਾਂ ਝੋਂਪੜੀ ਡਾਲ ਲਈ ਵਹੀ ਮੇਰਾ ਗਾਓ ਹੈ। ਯਹ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਾਓ ਆਪਣਾ ਗਾਓ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਤੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਸੇ ਨਾਤਾ ਟੂਟ ਗਿਆ ਬਿਟੀਆ, ਅਬ ਤੋ ਯਹੀ ਕਾਰਤਿਕ ਮੇਰੇ ਗਾਓ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਮੇਰੇ ਗਾਓ ਕਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਯਹੀ ਕਾਰਤਿਕ? ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਬ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਤੀਲੇ 'ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ਉਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਕੁਝ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਟਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕੇਤਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਚੰਬੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ। ਕਿਆ ਦੇਖਤੀ ਹੋ ਬਿਟੀਆ, ਇਹ ਤੋ ਮੇਰੀ ਬਿਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਬਿਰੰਗ ਚਿੱਠੀ? ਜਬ ਚਿੱਠੀ ਪਰ ਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਤੋ ਵੋ ਬਿਰੰਗ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੰਮਾ, ਜਬ ਚਿੱਠੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋ ਵੋ ਬਿਰੰਗ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਕੋ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦਾਮ ਦੇਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਅੰਮਾ, ਉਸ ਕੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੜਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਯਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਕੋ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਦਾਮ ਦੀਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋ ਤਨ ਕਾ ਦਾਮ ਦੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮਨ ਕਾ। ਮੈਂ ਕੇਤਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੇਤਕੀ ਦਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਸੌਲਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਬੰਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਜਬ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਗਾਓ ਕੇ ਬੜੇ ਬੂੜੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਆ ਅੰਮਾ, ਤੁਹਾਰੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਾਓ ਵਾਲੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਥੀ? ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਥੀ, ਮੈਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਯੇ ਕਾਰਤਕ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋ ਸਿਰਫ ਕੇਤਕੀ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਰਾ ਨਾਮ ਕੇਤਕੀ ਹੈ? ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਹੋ ਅੰਮਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੇ ਕਬੀਲੇ ਸੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਕੌਨ ਸਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅੰਮਾ? ਯਹੀ ਜੋ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵੋ ਸਭ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਵੀ ਜਬ ਜੰਗਲ ਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮ ਲੋਕ 13 ਦਿਨ ਉਸਕਾ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਤੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਕੇ ਮਰਦ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਹੰਡੀਆਂ ਫੋੜ ਕਰ मिट्टी की हंडिया फोड़ कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं। सच अम्मा, मैं चकमक टोला की हूँ जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। ये कपिल धारा क्या है अम्मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? गंगा बहुत पवित्र नदी है, जानती हो ना? जानती हूँ, पर कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है। कहते हैं कि गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारती है और कपिल धारा में स्नान करने के लिए जाती है। ये चकमक टोला किस जगह है अम्मा? करंजिया के पास। और ये करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ सुना है, नर्मदा नदी और सोन नदी भी नजदीक पड़ती है, तो यह नदियां भी बहुत पवित्र है। उतनी नहीं जितनी कपिल धारा, या तो एक बार धरती की खेतियां सूख गई थी, लोग बेचारे उजड़ गए थे, तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी रो पड़े थे। ब्रह्मा जी के आंसू धरती पर गिर पड़े, बस जहां उनके आंसू गिरे वहां ये नर्मदा और सोन नदी बहने लगी। अब इनसे खेतों को पानी मिलता है, और कपिल धारा से? इससे तो मनुष्य की आत्मा को पानी मिलता है। मैंने इसी के जल में स्नान किया था और कार्तिक को अपना पति मान लिया। अब तुम्हारी उम्र क्या होगी अम्मा? 16 बरस की होगी। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों ना माना? ये बात थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी, इसकी औरत मेरी सखी थी, बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू दो बेटे हुए, दोनों बेटे एक ही दिन जन्मे थे। तो हमारे गांव का गुणिया कहने लगा कि ये औरत अच्छी नहीं है, इसने एक ही दिन अपने पति का संग भी किया था और अपने प्रेमी का भी, इसलिए एक की जगह दो बेटे जन्मे। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया, पर गुनिया की बात को कौन टालेगा। गांव का मुखिया कहने लगा कि रोमी को प्रायश्चित करना होगा, उसका नाम रोमी था। वो बेचारी रो रो कर आधी रह गई। फिर ऐसे हुआ कि रोमी का एक बेटा मर गया। गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वो पाप का बेटा था, इसलिए मर गया। फिर रोमी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल चुनने लगी। पास की झाड़ी से एक भागता हुआ हिरन आया। हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पलने के पास आया तो उसने हिरन को पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया, बेचारी रोमी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई, तभी तो हिरन भागता हुआ आया और दूसरे बेटे के खाने के लिए पलने के पास आ गया। पर बच्चे को हिरन ने तो कुछ नहीं कहा था, उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया था। गुनिये की बात को कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वो कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी, फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। ये गुनिया लोग तो बात ही बात में किसी को मरवा डालते हैं। बसाई का नंदा जब शिकार करने गया था तो उसका तीर किसी हिरन को नहीं लगा था। गुनिया ने कह दिया कि जरूर उसके पीछे उसकी औरत किसी गैर मर्द के साथ सोई होगी, तभी तो उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। तो नंदा ने घर आकर अपनी औरत को तीर से मार दिया। अरे, गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वो अपनी औरत को जान से मार डाले, नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुख देखकर गांव की खेतियां सूख जाएंगी। फिर कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए राजी नहीं हुआ। इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग जब नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं, सोचते हैं अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गांव के पशु मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी बंद कर दिया। पर वो ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो फिर वो खुद भी जिंदा कैसे बचेगा? क्यों, उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पुलिस नहीं पकड़ सकती, पुलिस तो तब पकड़ती है जब गांव वाले गवाही देते हैं। पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता ही नहीं लगने देते। फिर क्या हुआ? बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांध ली और अपने गले में डालकर मर गई, बेचारी बेगुनाह रोपी। गांव वाले ने तो समझा के बात खत्म हो गई, पर मुझे मालूम था कि बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वो गुनिया को जान से मार डालेगा। ये तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा, मरकर राक्षस बनेगा। वो तो जीते जी भी राक्षस था। जानते हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है, जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेमी प्रेम नहीं करता वो मरकर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है, उसकी रूह काली हो जाती है और रात को उसी की छाती से आग निकलती है। वो रात को गांव की जवान लड़कियों को डराता है। फिर मुझे उसके मरने का तो गम नहीं था, पर मैं जानती थी कार्तिक ने अगर उसको मार दिया तो गांव वाले कार्तिक को उसी दिन तीरों से मार देंगे। फिर मैंने कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी, हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को जरूर मार देगा, तो अगर वो गुनिया को मार देगा तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया, जानती हूँ वो धरती नरक होती है जहाँ मगवा नहीं उगता, पर क्या करती है? अगर वो देश ना छोड़ती तो कार्तिक जिंदा नहीं बचता, और जो कार्तिक मर जाता तो वो धरती मेरे लिए नरक बन जाती, देश देश इसके साथ घूमती रही। फिर हमारी रूपी भी हमारे पास लौट आई। रूपी कैसे लौट आई? हमने अपनी बिटिया का नाम रूपी रख दिया था। ये भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया कि मेरे पेट से जब कभी कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रूपी रखूंगी। तो मैं जानती थी रूपी का कोई कसूर नहीं था। जब मैंने बिटिया का नाम रूपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ। अब तो रूपी बहुत बड़ी हो गई। अरे बिटिया, अब तो रूपी के बेटे भी जवान होने लगे। बड़ा बेटा 8 बरस का है और छोटा 6 बरस का। मेरी रूपी यहाँ के बड़े माली से ब्याही है। हमने दोनों बच्चों के नाम चंद्रू मुंद्रू रखे हैं, वही नाम जो गोपी के रूपी के बच्चों के थे। हाँ वही नाम रखे हैं। मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। तो मैं किन्ना चिर केतकी दे मुँह वल तकदी रही। कार्तिक दी वो कहानी जड़ी किसी गुणिए ने अपने डाढ़े हथा नाल उधेड़ दिती सी, केतकी अपने मन दे सुच्चे रेशमी धागे नाल उस उदड़ी हुई कहानी नू मुड़ के सियोंदी पई सी। एक कहानी दी गल है, होर मैनू भी पता नहीं तुहानू भी पता नहीं कि दुनिया दे ये गुणिए दुनिया दीआं किन्नीआं क कहानियां नू रोज़ उधेड़दे हन। धन्नवाद।
0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ 99.9 FM ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।